तू पगे अपेंच हिसोस कई हाथ तू क्रोस पिवान काते मनारी चाई मन चाईस पकम या छुमाओं कई तक या चीस पन नू तको तेंते गिरं या काम कई तो रचन इस प्सक्षिन पगे आई तो मको की पश्कोनन पगे आई तो तो कुनुकन स्तंबन कोस क्रिकोनन Kunan punca kai hatun mandis kata rohku kunan kai tahapis kai tayaris pakai kampa diusun.